संसार विकास सीमें करियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे इहो रस कत कदा गिर जानी जा को आए सोई बेहज।

सचदानंद सतरंग वाराणसी करी मुल्क निंदा सुमस्तल निवासी अजाए बाब बुद्धे गजाए बनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते।

0: सिमरन कृष्ण बुझे
1: प्रभु के सिमरन सब को सूझे
0: प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा
1: प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा
0: प्रभु के सिमरन मन की मल जा

0: मात पिता सुत मीत न पाए
1: मानुह नाम तेरे संग सहाई
0: महाप्याम दूत जम दल
1: तै केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल हो वह अत पारे
1: हर को नाम के नए उधारी
0: उन्हें चरण करत नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: नाम जप हो मन मेरे
1: नानक पावो सुख घनेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत हो सुखिया
0: करोरी बंद न परे
1: हर का नाम जपत निस्तरे
0: अनेक माया रंग तिख न बजावे
1: हर का नाम जपत गावे
0: जय मार्ग एहो जात अकेला
1: तै हर नाम संग होत सहेला
0: ऐसा नाम मन सदा तिहाई है
1: नाम गर्म पर जात पाहिए
0: छूटत नहीं कोट लख बाहे
1: नाम जपत है पार पराही
0: अनेक विघ्न जय आए संघारे
1: हर का नाम तत्काल उधारे
0: अनेक जोन जन में मर जाम
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: मैला मिल कबह न तोवे
1: हर का नाम कोट पाप खोवे
0: ऐसा नाम जपो मन रंग
1: नानक पाइये साध के संग
0: जय मार्ग के गन जाहे न कोसा
1: हर का नाम हुआ संग तोसा
0: जय पंडे महा अंध गुवारा
1: हर का नाम संग जियारा
0: जहां पंत तेरा को ना सियानो
1: हर का नाम तै नाल पछानो
0: जय महाप्याम तपत बहु काम
1: तै हर के नाम की तुम परशाम
0: जय त्रिखा मन तुझ आकर्खे
1: तै नानक हर हर अमृत भरखे
0: संत जना की बर्तन नाम
1: संत जना के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात
1: हर हर औकत साधक मात
0: हर जन के हर नाम निदान
1: पार ब्रह्म जन की नो दान
0: मन तन रंग रते रंग एक
1: नानक जन के वेत्त विवेक
0: हर का नाम जन को मुक्त

0: जन को भोग जोग,
1: हर नाम जगत कछनाहे बियोग,
0: जन रत हर नाम की सेवा,
1: नानक पूजे हर हर देवा,
0: हर जन के माल खजीना,
1: हर तन जन को आप प्रभ लीना,
0: हर हर जन के ओट सताने,
1: हर प्रताप जन अवर न जाने,
0: ओत पोत जन हर रस राते,
1: सुन स्वाद नाम रस माते,
0: आठ पहर जन हर हर जपे,
1: हर का भक्त भगत नहीं छपे,
0: हर के भक्त मुक्त बहु करे,
1: नानक जन संकेते तरे,
0: हर जाते हर को नाम,
1: काम तेन हर हर गुण काम,
0: सबते उत्तम हर की कथा,
1: नाम संत दर दुख लथा,
0: नाम की महिमा संत रिद्वस है,
1: संत प्रताप दर्द सब नसे,
0: संत का संग बड़ भागी पाई।

0: प्रसाद छत्ती अमृत खाहे
1: तिसका कर को रख मन माहे
0: प्रसाद सुगंध तन लावे
1: तिसको सिमरत परम गत पावे
0: प्रसाद बसे सुख मंदर
1: तिसे त्याए सदा मने अंदर
0: प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पै सिमरो तिस रसना
0: प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याए त्यावन जोग
0: प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: तिसे त्या कथावर लुभावे
0: प्रसाद सुख से सोई जे
1: मन आठ पै ताका जस गाई जे
0: प्रसाद तू सब को माने
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मान सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: रब जी जप दर गए मान पावे
1: नानक पासे की कर जावे
0: प्रसाद अरोप कंचन देही
1: लिख लावो तिस राम सनेही
0: प्रसाद तेरा उल्ला रहत
1: मान सुख पावे हर हर जस कहत
0: है प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
1: मन सानी पर ठाकर प्रभु ताके
0: है प्रसाद तुझको ना पहुंचे
1: मान साथ साथ सिमरो प्रभु चे
0: है प्रसाद पाई दुर्लभ
1: नानक ताजी भगत करे
0: प्रसाद अपूखन पहरी जय
1: मन ते सिमरत को आरस की जय
0: प्रसाद अस हस्त असवारी
1: मन ते प्रभु को कबहु ना विसारी
0: जय प्रसाद बाग मिल्ख तना
1: राख होए प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठ सच से त्याई
0: से त्याई जो एक अलख
1: है नानक तेरी रखे
0: प्रसाद करे

0: तेरी पत रहे।
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
0: जय प्रसाद सुने कर्ण नाद।
1: जय प्रसाद पेखे विस्माद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना।
1: जय प्रसाद सुख सहजे वसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है।
1: जय प्रसाद सपूरन फले।
0: जय प्रसाद परम पद गत पावे।
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो।
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार।
1: इस प्रभ को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप।
1: रे मन मूठ तू ताक्यो जाप।
0: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे।
1: तिसे जान मन सदा हजूरे।
0: जय प्रसाद तू पावे साच।
1: रे मन मेरे तू ताक्यो राच।
0: जय प्रसाद सब की गत होए।
1: नानक जाप जपे जप सोए।
0: आप जपाए जपै सो नाओ।
1: आप गवाए सुहार गुण गाओ।
0: प्रभ कृपाते होए प्रगास।
1: प्रभु दया ते कमल विगास।
0: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए।
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए।

0: संग मुखुजल होत
1: साध संग मन सगरी खोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ध्यान
0: साध के संग बूझे प्रव नीरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक उपर जतन
0: साध की महिमा वरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा प्रभ समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर बहन
0: साध के संग न कतहु तावे
1: साध संग असत मन पावे
0: साध के संग माया ते पैन
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग के सेव नहीं बैर
1: साध के संग न मीगा पैर
0: साध के संग नाही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग नहीं हो ताप
1: साध के संग तजे सब आप
0: पे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग ना कबहु तावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग वास्त अगोचर लहे
1: साधु के संग अजर सहे
0: साध के संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ सब तारव
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के करबान
0: साध के संग सब कुल उधारे
1: साध संग साजन बीच प्राण निस्तारे
0: साधु के संग तो था सोतन पावे
1: जिस तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गाम
1: नानक साध के संग समल जनाम
0: साध के संग नहीं कछ काल
1: दर्शन पेट तो होत निहाल
0: साध के संग कलू खत खरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग इहां उहां सहेला
1: साध संग विचरत हर बेला
0: इच्छे सोई फल पावे
1: साध के संग न व्यर्था जावे
0: हर ब्रह्म साध रिद वसे
1: नानक उतरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते विसरे
1: साध संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रा मीठा
1: साधु के संग कट कट लेठा
0: साध संग पाए आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग।

0: ज्ञानी सकल की रीना
1: आत्म ज्ञानी चीना
0: राम ज्ञानी की सब ऊपर माया
1: राम ज्ञानी ते कछ बुरा ना पिया
0: राम ज्ञानी सदा समदर्शी
1: राम ज्ञानी की दृष्टम वर्तवर्षी
0: राम ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: राम ज्ञानी की निर्मल योगता।

0: निमित्त कौन बखाने।
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता।

0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तोर कर्म,
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास,
1: राम तिस नदरी आया,
0: दास संतन पाए तिन पाया,
1: सदा निकट निकट हर जान,
0: सो दास अर्गे परवान,
1: दास को आप कृपा करे,
0: इस दास को सब सो जी परे,
1: सगल संग आत्म उदास,
0: ऐसी जुगत नानक राम दास,
1: आत्म हितावे,
0: जीवन मुक्त सो कहावे,
1: जैसा हरख तैसा उस सोग,
0: सदा नंत नहीं वियोग,
1: जैसा सुवर्ण तैसी उस माटी,
0: तैसा अमृत तैसी वे खाटी,
1: जैसा मान तैसा अभिमान,
0: तैसा रंग तैसा रजान,
1: जो बरताए साई जुगत,
0: नानक को पर कहिए जीवन भगत,
1: ब्रह्म के सगले ठाव,
0: जितका राखे तैसा तेर नाओ,
1: पे कर्म करावन जोग,
0: प्रपावे सोई फन होग,
1: सरे वाप होय अनत तरंग,
0: रखे न जाए पार ब्रह्म के रंग,
1: जैसी मत दे तैसा परगास,
0: पार

0: अहंकार
1: नारक स्वर्ग फेर फेरे अवतार
0: अनक जतन कर आता नहीं द्रवे
1: हर दरगे को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: तिसे भलाई एक नावे
0: सारुपी रेन जहाँ का मन होए
1: कौ नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कश होए
1: तब

0: जलमथा
1: गीते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: से तन अंत गनि संसार
1: तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जान्यो ते सुखी
1: को एक एक पछाने
0: यतत कियो सो जी जाने
1: राम संग जिसका मन मान्या
0: नानक तिन्हे निरंजन जान्या
1: प्रसाद अपन आप सूजे
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग ते वरन रहत
1: जन कीर्तन केवल बखियान
0: गृहस्थ में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसकी कटिए जम की फासा
1: हर ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक जिसे न लागे दुख
1: हर प्रभ मन चित आवे
0: सो संत से हिला नहीं डलावे
1: प्रभ अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किसते डरे
1: ऐसा सात ऐसा दृष्टाया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सीचिया
0: गुर प्रसाद तत् सब बुझिया
1: देखो तब सब किस मूल
0: नानक सो सुखम सोई अस्थूल
1: किस जन्म में न कश मरे
0: आपन चलता आप ही करे
1: आवण जाम दृष्ट दृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: पे आप सगल में आप
0: अनेक जुग तरच थाप थाप
1: विनाशी नाही किस खांड
0: तारन तारे हो ब्रह्मांड
1: परख प्रताप
0: आप जपाए नानक जाप
1: प्रभ जाता सो सुभावंत
0: सब संसार उदरे तिन मंत
1: के सेवक सगल उदारण
0: प्रभ के सेवक दुख बिसारन
1: पे मेल लय कृपाल
0: गुर का शब्द जपै निहाल
1: की सेवा सोई लागे
0: जिसनो कृपा करे बड़ भागे
1: राम जपत पावे विश्राम
0: नानक तिन गुर को उत्तम करमान
1: कुछ करे सो प्रभ के रंग
0: सदा

0: जी नाल संभारे
1: ग्रह से भुक जो रहे
0: गुर की आज्ञा मन में सहे
1: उसको कर कछ न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सत्य आवे
1: बेचे सत गुर के पास
0: ते सेवक के कार्य रास
1: करत होए नह कामे
0: तिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: बीस विश्वे गुर का मन माने
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सत गुर जिस हृदय हर नाव

0: सगल व्याध मंत्र कह न से
1: सतन कृपा तारी
0: सा संजप नाम मरारी
1: पाई चुके प्रभु गमन
0: सो नानक हर हर सर्वन
1: निर्गुण अवसर गण

0: दर्शन पेदोदर श्रेष्ठ
1: कमल जाके अनूप
0: सबल दर्शन सुंदर रूप
1: सेवा सेवक परमान
0: अंतर्यामी प्रदान
1: मन बसे सहूत निहाल।

0: अग्होत्रांग
1: संत जना के तूर मन भंग
0: आप छोड़ बेनती करह
1: सा संग अगन सागर तरो
0: बर्तन के परले हो पंडार
1: नानक गुर पूरे नमस्कार
0: हेम कुशल सहज आनंद
1: सा संग पंच परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चितवो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: लाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ये आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल रतन
0: संत कमावत होत उधार
1: आप करे लोक के निस्तार
0: सफल जीवन सफलता

0: साथे
1: शरण जो सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभाव मंगलाए
1: तिरे बैर पए सवरेन
0: अमृत नाम साथ संग लहन
1: प्रसन्न पए गुरुदेव
0: पूरन होई सेवा की सेवा
1: जाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: हर प्रसाद दया प्रवतारी
0: नानक निभि के पहमारे
1: की उस्तत करो संत मीत
0: साध दाने का गर्जीत
1: सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सो धन दान
1: सर्व इच्छा ताकी पूरन होए
0: प्रधान पुरख पर सब लोए।

जेनु हरो हरो हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जेनु हर